हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरि प्रचंड हरि।

नाचत फिरत मोर बांधर करत होर दामरी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या ननत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जोगन की जोकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण कित वेद पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोदी मदार कित

जोगि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही बो दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिजते करे अनेक दोब जी कपट भेष पोसती अनेक दारी बावत है। शीस को कहा भय मल्ल जप काढ़ते अनेक डंड सो तो न डंडौत अस टांग अति तीस को कहा भयो रुकी जो बेडार रही ऊर्ध मुख मन तेना मुंड ने हो रायो अत ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पाव जगदीश को। शीस पटकत जाके कान में खजूर धस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को भचैया सदा पान को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे फिट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है। एक पाए ठाडे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग चीन देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हो जलीन भावना यकीन दीन कैसे के दरत है। जैसे एक सौंगी कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी होई के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीतकाल कुंचर ओ गदह अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठार अंसो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जब पाई तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जब पायत अजाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नव के उड़त जब नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बस के भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी गो जो कि भयो को ब्रह्मचारी गो जति अनुमान बो हिंदू तुरक गो राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई राज रहीम हुई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयान एक को भ्रमाओ है। देवता देव जज गंधर्व दुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के फेस।

जान हुई, एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग दे कनु का कोट, आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप दे अभूत भूत प्रकट हो, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केत कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज रीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत, किते जल में डुबत किते आग में जरत है। किते गंग वासी किते मदीना मक्का निवासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत किते भूम में गड़त, किते सुहा पे चढ़त किते दुख को भरत है। गैन में उड़त किते जल में रहत, किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानव वडे बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जाप सीख हस हारे, चंदन लगाए हारे, जो आचार बोझ हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गा हारे, गोरन मनाए हारे, मटी मटली पहारे, वितन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित तपंत।

न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रये। न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न जोभंग भूतंग फेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग। न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नी अच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग। न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध व्यर्थं स्वरूपे नमो एक।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने, कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं, कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं, कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दोखं, कहूँ औषधि रोग के शोक सोखं, कहूँ देव विद्या कहूँ दैत वाणी, कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी, कहूँ राजसी साधकी तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो, कहूँ राज कन्या, कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के ऋष पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी, कहूँ कोक की काव कथा कहानी, कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टा चार चित्रं

रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूरण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हूं कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हूं कहूं देश भाख्या कहूं देव बाने कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नाग बाने कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हूं कहूं वीर विद्या भूतं प्रभाहो कहूं झैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजं धीरा जाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षया दत्व विधाता न त्रस्तं न

अंश जगाद करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल व्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन डोल जय अमित तेज अक्षय तोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावतन पार। कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब। कई अग्नहोत्र कई पवनहार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार डंत कई देश देश विद्या पडंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरम सोहरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचारणी तदवता सपायतन पार। कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सोकरम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्गदान। कहूँ वितर करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र से मृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रम देश देश अनुदास कई जल निवास कई जगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदब तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन हो कुटो।

चित्त कृपा नित को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सारस्वती जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है। त्वा प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिए अभूत भूत है सदा गंज गंज मानिए। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सजीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सजीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेक है। न तात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेग सेग फेक है सदीव विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के अभिखे सदीव करम भरम है। अद्वैख है अभेग है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई बुरान और कुरान नेत नेत के बतावई। न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कहूँ सो कैसे पाइये। जिमी जमान के अभिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। नहान है न बान है समान रूप जानिए मगीन व मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह न गेह न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न

न सिंह है न श्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जाच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न शाह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है।

पर यह पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाथ है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेद है।

हाओ है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है न छल है न छिद्र है न छिद्र की छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोह मोहकार है न आद है न गाद है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाओ है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखी है बेअंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ पेखी है अगाध अध देव की अनाथ बात मानी है न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानी है।

हस्त कीट बिखै पसै सब डौर मैं निर्धार। जात पात ना तात जा को मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जह चक्र चिहन न चित्र। आदि देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जानहि जे मरम वेद गतेव सनक औसन केस नंदन पावहि न सेव। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेद नेद पुकार ही शिव सकर अमुख चार। सर्व सपत पतार के दर्जा पही जह जाप आद देव गाद दे जन आद मूर्त ताप। जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीन। जछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैष्ण के विखे विराज सूद्र भी वहनाहे। गुड़ गौड न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूम आकाश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व सबत पतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन नेत पूरण होत। सोत सोत हटे सभ्य सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब। पड़त पड़त थके

देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमका जले थले महमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र बालक शत्रु।

हार हार थके सवे नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सवे कर कोट कष्ट तुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद प्रत्ये चुरासुर मारण पति दूधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज।

रूढ़ वंगे बपर बंगे भुजा फुरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायध चमके भूखण दमके अत से झमके फुंग फनंग जय जय हो से मखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण धुजा फुरंकण फणी फुंगारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो से मखा सुर मर्दन भूम का तलूर्ध अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचरण निते नराचन धर्म वृते श्रोणंद चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उपारण शुद्ध मते फणि अर्फुंगारण बाघ बकारण सहस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन भूम आकाश पताल जनंग चाचर चमकारं चिच्छोरहारं धूम धुंगारं द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंत प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो से मखासुर मर्दन भरम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो से मखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निगंदन भ्रष्ट विनाशन प्रत मथे।

डुकडुकी दमंगे बाघ बबंगे हुजा फरंगे सुध गते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद जुगाद नाद मते तछरा सुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्प चंडन खंड अखंड।

विवर्गन दुर्जन दर्गन अतुल अमरखन धर्म दुजे धूमराज विदन संसोण तुन संसुंभ न पात निशुंभ मथे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आद नील अगाध कथे।

अनंत तव कहो जथावत दृढ़ तंत। करता करीम कादर कृपाल अद्वै भूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत। कईउ जनीज कीनो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिजदा कर।

कामल कृपाल दुख दोक हरत दाता दयाल अंजन विहीन भंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जेह जात पात नहीं भेद भ्रम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दू एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार। जानी न जाए जेह रूप रेख कहे वास तास कहे कौन भेक कहे नाम तास है कवन जात जेह शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चिहन नहीं रंग रूप जेह खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग

संभूहन भेंट न पावे, और की बात कहा कह दो सो सो भेंट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे, भूम आकाश पतार सातर जच भुजंग सब सर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे, घोर थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद सैरुम नारिक से सब हो मिल गायो, वेद कते बन भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो, ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान वेद नृपान सभ पचहारे, वेद न पाए सक्यो अन भेद मुखेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे, आद अनाद अगाद बेगद वेख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट की स्नान दिए बहुदान महाप्रत धारे, देश विरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसर कोट करे अष्टांग धरे, मोहन्यास करे मुहकारे, दीन दयाल अकाल भजे बिना अंत को अंत।

अत्र के चलैया छित्र छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर बिना पार बाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरब आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है मरहटा मंगेली तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस न्यावे देव तिथि आये दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे ध्यायो दिन गोरन प्रताप पायो सर्व धम धन धाम फल फूल सो फलत है देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचतता है चिट्ठी की चिंघार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास प्रवीन किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है करते हैं विचार बना पूर्ण को पावे पार ताहीं ते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार व्य पार के बखानिये अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानिये जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिये तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानिए तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को गर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है।

जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, एक कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हूं को पार, जगो की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हब सी हल पिथ्यावे, पूर्व बिना पार पावे, असत अनाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा, महाजोग हूं को जोग है, धरैया द्रोम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत, छाज कैसी छतरा ने, छपा कर कैसी छप, कालिंद्र के कूल के, हंसनी सीसी हर महीरा सी हुसनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरसी सुरंगाबाद, नीके रही झूल के, चंपा सी चंदेरी गोड, चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद, नीके सोहियत है, हिमा सी हिमालय हर हार सी हलपा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावत, चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़, जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार, बकान सी विलंदावाद, कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के प्रतंगी, तेरे गीत गाइयत है, फखरी गंधारी गोर कखरी, करते जचारी पौन के हारी, तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ, सर्वठौर मैं विराज, जहां जहां जाइयत है, पूर्ण प्रताप, जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ।

तेरा दिल जाए लिखा रहा जात में जात जोत में जाता अकल कला भर रहा तू सचा

अबिनता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडियावर ना कोई तू जुग जुग एको।

काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद

मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आकर्ख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी भूज उचारे तुम सब

प्रीति बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सुमिट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच करो ऋण घाता जे अस ध्वज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब

दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाय निहरहु ताके ताप तनक मह हरहु। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई।

पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सतरै।

राज करे नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पुर अवतार जन्म लोक बिरादरी श्री चंद्रपाल सच